0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबेद और सोफिया जमशेद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब।
1: अरे वसीमा साहिबा, ये वाटर गन क्यों ले आई हैं स्टूडियो में?
0: वाटर गन नहीं, गन्स हैं। मैंने तो वाटर बॉल भी लाना था ताकि उसको फोड़ के जो पानी निकले उससे आपको भगाऊं और गर्मी भगाऊं। इसे आप वसीमा सुनाएंगी पानी कहानी।
1: जी, आज पानी की कहानी भी सुनेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। पहले होगी एक बड़ी नई नवेली और ताज़ा तरीन रिपोर्ट।
0: रुके रुके, मैं समझ गई, ये रिपोर्ट होगी पाकिस्तान जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल 2026 पर। जी सामिन, आजकल टोक्यो में मुनाक़िदा इस चार रोज़ा मेले के पहले दिन पर रिपोर्ट सुनते हैं खलील शिराजी की ज़ुबानी।
2: जी दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं टोक्यो के उएनो पार्क में। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ख़वातीन हज़रात यहां पे जमा हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे सजा है पाकिस्तान जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल का मेला।
3: यहां पाकिस्तानी खानों के स्टाल सजे हुए हैं और पाकिस्तानी सकाफत के रंग नुमाया हैं।
2: दोस्तों, अभी मेरे पीछे जो मुजाहरा किया जा रहा है, ये तलवार रक्स है। तलवार रक्स का मुजाहरा किया जा रहा है।
3: रक्स करने वालों ने समुराई लिबास ज़ेब तन कर रखा है और जापानी तलवारों के साथ अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, और लड़ाई के मनाजिर को भी रक्स के अंदाज में पेश किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस रक्स और पाकिस्तानी तलवार रक्स में सबसे नुमाया फ़र्क लिबास का ही है।
2: जी दोस्तों, ये था तलवार डांस। तो यहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, पाकिस्तान से हैं, तो वो देख रहे थे बड़े निमाक के साथ। तो उनसे पूछते हैं वो पाकिस्तान में कहाँ से हैं और उन्होंने इस रक्स को कैसा पाया।
4: मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ और मुझे जापान में 3 साल हो गए, तकरीबन तीसरा साल है तकरीबन देख रहा हूँ। और बड़ा मज़े का जो है ना, मतलब ये इवेंट होता है। और अभी जो रक्स का मैंने देखा है ना, रक्स बहुत मज़े का था, बहुत कमाल का था। ये इनका ट्रेडिशनल है, जापानी कल्चर है, तो बहुत मज़े का था।
2: तो क्या महसूस हुआ इसको देखकर, क्या याद आया?
4: पुराने दौर में जो हम वैसे मूवीज़ में देखते हैं, वो सारा जो पुराना दौर है वो याद आ गया है।
3: तकरीब के दौरान मेरी मुलाकात इस इवेंट के मुंतजिम से भी हुई। मैंने उनसे इस तकरीब के इनेकाद के अखराज और मकासद के बारे में पूछा।
5: जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरिश्का शाकिर खान गौरी है, नाम थोड़ा लंबा है। असल में ये प्रोग्राम हमने 2008 से शुरू हुआ था, बेसी में शुरू हुआ था। उसके बाद हम ये इस प्रोग्राम को, ये 9वीं दफ़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इसका बेसिक मकसद हमारा ये था कि मैंने जैपनीज है बच्चे मेरे ना, तो इन बच्चों को किसी तरीके से हम जो है अपने साथ कल्चरी जो है इनको अपने आप साथ मिलाएं। फिर ये है कि हमने इसको जश्न आज़ादी भी साथ मना लेते हैं। तो कोशिश ये होती है कि जैपनीज़ों के साथ मिल के ये जो है ना प्रोग्राम किए जाए, एक दूसरे का तावन जैसे होता है, इनका हमारा खाना है, इनके खाने हैं। जैसे आज आपने देखा है कि गायम शो से भी आए, उन्होंने यहाँ पर देखा, तो ये अप्रिशिएट होगा। तो ये पाकिस्तान का इमेज के लिए भी अच्छा है और हमारे जो बच्चे हैं वो आपस में यहाँ पर मिलें, बस यही हमारा मकसद है।
3: शाकिर साहब ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि अब कुछ जापानी नौजवान रवानी के साथ उर्दू बोलते हैं, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। लेकिन फिर उसी वक्त मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई जो ऐसे उर्दू बोल रहे थे।
6: मेरा नाम केंता है और मैं जापान से हूँ।
2: कैसा लगा, कब आपको पता चला कि ये इवेंट है? आप हर साल आते हैं या पहली दफ़ा आए?
6: मैं तो ये पहली दफ़ा नहीं है, मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ आता रहता हूँ।
2: जी, क्या चीज़ आपको खींच जाती है यहाँ, क्या चीज़ यूनिक है, किस लिए आते हैं?
6: जैसे तो अभी कव्वाली का नज़ारा चल रहा हो रहा है, तो ये भी बहुत एक मुनफरिद चीज़ है ना। हाँ,
2: तो इतनी अच्छी उर्दू आप कैसे बोल लेते हैं?
6: कि अपने असातिज़ा के साथ।
2: या उर्दू पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं?
6: टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, टोक्यो गाइगोदाई में। 5-6 सालों के लगभग से उर्दू की पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं 1-2 दफ़ा पाकिस्तान भी जा चुका हूँ, तो पाकिस्तान में से भी मैंने उर्दू सीखी है।
2: तो यहाँ कोई मुकाबला हो रहा है, देखते हैं किस चीज़ का। हाँ, आम खाने का मुकाबला है, तो आइए देखते हैं कि आम खाने का मुकाबला कौन जीता या कौन जीतती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के लगभग पार्टिसिपेंट्स हैं, और मेरे ख्याल में सारे के सारे जैपनीज हैं। तो अब देखते हैं कि कौन जीतता है और या कौन जीतती है। तो अभी शुरू होने वाला है।
7: अच्छा, ये मैंगो ईटिंग कॉन्टेस्ट है। इसका रूल ये है कि اس کو صحیح طرح جاپان میں تو بڑا تھوڑا تھوڑا کھایا جاتا ہے, پاکستان میں تو ایک ایک مینگو کھاتے ہیں. تو اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح طرح اس کو, اس کا مطلب اندر سے صحیح طرح صاف طریقے سے, اور سب سے جو جلدی کھائے گا وہ جیتے گا.
2: اچھا, یعنی اندر سے صاف کرنا ہے اور مکمل طور پہ جوس نکال کے پورا صفائی کے ساتھ کھانا ہے, تو جو پارٹیسپینٹ پہلے فنش کرے گا وہ جیتے گا. تو دیکھتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں, لیکن جاپانی لوگ عموماً اتنا زیادہ کھاتے نہیں ہیں, تو مزہ آئے گا دیکھنے میں, دیکھیے گا.
3: اس مقابلے کے فاتح ایک نوجوان جاپانی نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتایا,
8: میں
3: نے اس سے پہلے کبھی پاکستانی آموں کا ذائقہ نہیں چکھا تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے میٹھے ہوتے ہیں. میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس ڈبے میں مجھے پورے 6 آم انعام میں ملے ہیں, ان کے لیے میں شکر گزار ہوں.
2: دوستو, آج پہلا دن تھا, مجھے تو بہت مزہ آیا, اور میرا ارادہ ہے کہ میں دوسرے دن بھی آؤں اور آپ کے لیے ایک ڈیٹیل رپورٹ بھی بناؤں. تو اگلے ہفتے کے پروگرام میں ڈیٹیل رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
0: بھائی, مجھے تو آم کھانے کا مقابلہ بڑا مزاحیہ لگا, میں بھی اس میں حصہ لینا چاہوں گی اور آموں کا ایک ڈبہ بھی جیتنا چاہوں گی. جاپان میں ویسے آم بڑے مہنگے ہیں.
3: جی ہاں, اگلے سال ہم سب اسٹیج میں جا کے اس مقابلے میں شریک ہوں گے.
0: جی بالکل. اچھا, ویسے میں خلیل صاحب تقریب کی باقی رپورٹ سننے کی بڑی منتظر ہوں.
3: جی, وسیمہ صاحبہ بھی ان رپورٹس میں میرے ساتھ شامل ہوں گی.
9: جی سامن, کیا یہ سن کے آپ کا اشتیاق بڑا ہے کہ آئندہ ہفتے بھی آپ سے مزید تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے, اور ہاں اس کے ویڈیو کلپس بھی بنیں گے, وہ بھی ہماری ویب سائٹ پر ضرور دیکھیے گا.
0: جی بالکل, اور ہم اور ہمارے ساتھ ساتھ سب سامعین بھی منتظر رہیں گے.
3: چلیے وسیمہ صاحبہ, اب آپ سنائیے وہ پانی کہانی.
9: ابھی تو آم کا سن کے میرے منہ میں آ رہا ہے پانی.
0: رکیے ذرا میں بتاتی ہوں. سامعین, پاک و ہند کے بیشتر علاقوں میں گرمیوں کا موسم چونکہ نسبتاً طویل اور شدید ہوتا ہے, لہٰذا وہاں گرمی بھگانے کا بڑا معروف طریقہ یہ ہے کہ صحنوں اور دالانوں کے ساتھ ساتھ گلی کوچوں میں پانی کا چھڑکاؤ کریں,
9: یا پھر واٹر گنز یا واٹر بال سے کھیلیں. ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں کہ یہاں جاپان میں بھی جب بہت گرمی ہوتی ہے تو بلڈنگز کے آس پاس اور چھڑکاؤ, سڑکوں پہ چھڑکاؤ کافی ہوتا ہے.
3: مجھے یہاں آ کر پتا چلا کہ جاپان میں بھی لوگ واٹر گیمز اور بیچ

0: जाता है।
1: जी, इसमें एक खिलाड़ी आंखों पर पट्टी बांधकर जमीन पर पड़े तरबूज को छड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि ग्रुप के दूसरे लोग उसके लिए हदायत दे रहे होते हैं, जरा दाएं हो जाओ, जरा थोड़ा आगे आगे, जरा सा पीछे हटो।
2: अच्छा, मुझे लगता है कि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन खेल का इंसार इस बात पर होता होगा कि दोस्त या साथी खिलाड़ी को कितनी अच्छी हिदायत दे रहे हैं। जितना अच्छे वो बताते होंगे, तो दुरुस्तगी से गाइड करते होंगे, तो जीतने के इम्कानात मेरे ख्याल में उतने ही रोशन होते होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर खिलाड़ी छड़ी को इस कदर दुरुस्त पोजीशन में ले जाए कि तरबूज तोड़ा जा सके, तो फिर जो जीता वही सिकंदर।
2: यानी तरबूज को छड़ी से फोड़ डाला।
1: फोड़ नहीं डाला, फोड़ ही डाला, और फोड़ने के बाद मिल बांट कर खाया भी।
0: खाने को बिस्मा एक और बड़ी तखलीकी खेल का जिक्र कर रही थी।
1: हाँ जी, हाँ जी, रेत का खेल। बिस्मा कहती हैं कि बहुत से लोग साहिल पर रेत के किले और रेत से कई चीजें, जैसे कोई ना कोई जानवर या सुरंगे वगैरह बनाते हैं।
2: रेत का किला बनाने के खेल के बारे में तो मैंने भी सुन रखा है,
1: जो बाल्टी में रेत भर के बनाते हैं।
0: हम भी बहुत बनाया करते थे बचपन में। बिस्मा के मुताबिक उन्होंने देखा कि कई खानदान और दोस्त अक्सर ऐसे तखलीकी डिजाइन बनाने और साहिल समुंदर पर लुत्फ अंदोज होने में वक्त गुजारते हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों को रेत में दफन कर देते हैं, सिर्फ उनके सर रेत से बाहर रह जाते हैं, और ये एक तफरीही साहिली सरगर्मी के तौर पर होता है।
2: ऐसी सरगर्मी के लिए तो काफी हिम्मत दरकार होती होगी। रेत में फंस जाए, धंस जाए, तो फिर क्या होगा?
1: असल में मसला यह है कि दोस्त ही हों दबाने वाले। क्योंकि रेत है, जरा सा जिस्म झटके, जरा सा जोर लगाएं तो रेत की दीवार मिनटों में गिरा सकते हैं।
0: अच्छा, उसी में एक और खेल है बीच फ्लैग, जिसमें साहिल पर छोटे छोटे रंग बिरंगे झंडे गाड़े जाते हैं, और इसमें खिलाड़ी साहिल पर गाड़ा हुआ झंडा हासिल करने के लिए एक साथ रेत पर दौड़ते हैं, और तेज तरीन खिलाड़ी जीत जाता है। बिस्मा बताती हैं कि इस बारे में मेरी एक याद है, मैंने ये बचपन में नंगे पांव खेला था, और रेत इतनी गर्म थी कि ऐसा लगता था कि मेरा पांव झुलस गया हो।
1: कहती हैं उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैंने खेल में कभी भी दोबारा शरीक नहीं होना।
2: बिस्मा ने एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। कहती हैं कि अपने बचपन में उन्होंने अपने भाई के साथ एक मुनफरिद साहिली मुकाबले में हिस्सा लिया था। मुकाबला ये देखने के लिए था कि किस की जिल्द सूरज में सबसे ज्यादा सांवली हो जाती है,
1: काले हो जाते हैं
2: तकरीबन, यानी कि मिलते जुलते। तो तकरीबन 15 शुरका इसमें मौजूद थे, और बिस्मा के छोटे भाई ने पहली पोजीशन हासिल कर ली थी।
0: वैसे यूरोपीय मुल्कों में तो लोग जिल्द को सांवला करने के लिए कई कई घंटे घुसले आफ्ताबी करते हैं।
2: घुसले, क्या शायराना तशबीह दे डाली। चलिए आपको एक गीत ही सुन लेते हैं।
0: जी जी, आज सुनवाए जाने वाले गीत का उन्वान है उमी नो यूरे, यानी समुन्दर की रूह है।
1: इसके पेशकार हैं केंची युनेजू। मार्च 1991 को जापान के तोकुशिमा प्रीफेक्चर में पैदा हुए वो। उन्होंने 2009 से हाची के नाम से वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म निको निको दोगा पर असल गाने पोस्ट करना शुरू किए थे।
0: 2012 में अपने असल नाम केंची युनेजू के तहत उन्होंने अपना पहला एल्बम दियोरामा जारी किया, जिसमें उनकी अपनी आवाज शामिल थी।
2: युनेजू ने टेलीविजन कमर्शियल्स, टेलीविजन ड्रामों और फिल्मों के लिए मुतअद्दिद थीम सॉन्ग लिखे और पेश किए हैं। 2022 में उन्होंने प्लेस्टेशन के कमर्शियल के तौर पर पॉप सॉन्ग कमर्शियल गाना लिखा और खुद भी इस कमर्शियल में नजर आए,
1: गुलुकार भी और अदाकार भी। उसी साल उन्होंने टीवी एनिमे सीरीज चेनसा मैन के ओपनिंग थीम के तौर पर किक बैक लिखा।
0: आज जो गीत सुनाया जा रहा है उमी नो यूरे, यानी समुंदर की रूहें, या स्प्रिट ऑफ द सी, ये एनिमेटेड फिल्म यानी काइजू नो कोदोमो चिल्ड्रन ऑफ द सी के थीम सॉन्ग के तौर पर रिलीज किया गया।
2: फिल्म चिल्ड्रन ऑफ द सी एक 14 साल लड़के की कहानी है, जो मौसम गर्मा में उसकी दो भाइयों के साथ मुलाकात की दास्तान है, जिन्होंने दोगोंग यानी एक किस्म की समंदरी मखलूक के ज़ेर साया परवरिश पाई। ये फिल्म फितरत के लिए गहरी अकीदत की अक्कासी करती है।
1: केंची योनेजू ने ऐसी मौसीकी लिखने की कोशिश की जो दरअसल उस फिल्म के मौजू से मुताबिकत रखती हो।
0: اس گیت کو منتخب کرنے والے بسما کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ گانا اس لیے منتخب کیا کیونکہ یہ فلم گرمیوں کے سمندر سے گہرا تعلق رکھتی ہے اور اس

0: के बोल गर्मियों के मनाजिर से भरे हुए हैं, जैसे समुंदर की रूहें और हवा से झुका हुआ रेतीला साहिल। मजीद बरा केंजी योनेजु जापान के सबसे मशहूर फनकारों में से एक हैं।
1: अच्छा, इसके गीत के बोलों का जहाँ जिक्र हुआ तो बिस्मा ने बोलों में समंदर से मुतालिक तमाम अल्फाज को अंडरलाइन कर दिया, तो बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन मैं इनमें से सिर्फ यही लाइन दोहराऊंगी। इस कमरे में कोई भी दरवाजे खुले नहीं, एक कुर्सी है जो समंदरी हवा की खुशबू में डूबी हुई है, मैं इसे खुला छोड़ दूंगा ताकि तुम गुम ना हो जाओ। तो आइए गीत सुनते हैं।

0: जी सामिन, केंची योनेजू का गीत समंदर की रूहें हमने सुना।
1: अब जापानी मुहावरों और कहावतों पर मुश्तमिल हमारा सिलसिला है जापानी कहावत गरी।
2: इस सिलसिले में हम जापान के जबान जदयाम मुहावरे नशर करते हैं, पेश करते हैं।
0: और आज का मुहावरा है वो गोकरो आरेबा मिजू गोकरो।
2: इसका लफ्जी मतलब है कि अगर मछली पानी के साथ मेहरबान है तो पानी भी मछली के साथ मेहरबान है।
1: और इससे मुराद ये है कि जब आप किसी के साथ मेहरबानी या खैर सगाली से पेश आएंगे तो वो शख्स भी कुदरती तौर पर मेहरबानी से जवाब देगा।
0: मजीद वजाहत यह है कि किसी से आपके सलूक का इन्हिसार उस बात पर है कि वो आपके साथ कैसा रवैया इख्तियार कर रहा है।
1: मुझे अंग्रेजी जबान का मुहावरा याद आ गया कि तुम मेरी कमर खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा।
0: जो मेरी मदद करेगा उसकी मदद करनी है, यानी इस हाथ दे उस हाथ ले। तो सामिन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं। आज की महफिल में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी बमबारी से मुतासर होने वालों का भी जिक्र करते चलें।
1: सामिन, 6 अगस्त बरोज जुमेरात हिरोशिमा और 9 अगस्त बरोज इतवार नागासाकी पर एटम बम हमला हुए 81 साल पूरे हो गए हैं।
0: आज भी उस दिन के बारे में सोचें तो दिल इतना उदास होता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं कि ऐसा भी इंसान हो सकता है लाखों बेगुनाह लोगों की जान मिनटों में ले ले। इस वाक़े ने पूरी इंसानियत को सही मानों में हिला कर रख दिया था।
1: जी, एटम बम इंसानियत के लिए इंतहाई तबाहकुन है। दुआ है कि आइंदा कभी ऐसा सानिया रोनुमा ना हो।
0: इन दोनों सानहात की बरसी के मौके पे जापान में खसूसी तकरीबात होती हैं और जापान हमेशा ही इस सानहे की होलनाकियों के बारे में आगाही फैलाने की काविशें करता रहता है।
2: पूरी दुनिया की खैर व आफियत की तमन्ना है।
0: और सामिन, आइए मिलकर दुआ करते हैं, कोशिशें करेंगे कि अमन को हमने फैलाना है। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि इजाज़त लेते चलें और बताएं कि जापानी बोलचाल के प्रोग्राम आइए जापानी बोलें का क्विज जापानी ज़बानदानी शुरू हो चुका है।
2: आप हमारे होम पेज nhk.jp/urdu के तवसुत

0: इस क्विज में शिरकत कर सकते हैं और इसी होम पेज के तवसुत से इसका जवाब भी भेज सकते हैं।
1: होम पेज nhk.jp/urdu पर सबसे नीचे मालूमात की सुर्खी तले एक लिंक है जिसका उनवान है हम आपके आरा के मुंतजिर हैं। इस्तेमाल की शरायत मंजूर होने की सूरत में हिदायत पर अमल करते हुए पैगाम रवाना कीजिए
2: और अब हमें इजाजत दीजिए।
3: अल्लाह हाफिज़।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 10 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी जापान में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त करते हुए लोगों से तापघात से बचाव के उपाय करने का आग्रह किया है। उसने ये भी कहा कि उष्णकटिबंधीय तूफान चान होम मंगलवार को देश के पूर्वी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि सोमवार को कोफू, गिफू, ओत्सु, सागा और कुमामोतो शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा नागोया और ओसाका शहरों में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। वहीं हिरोशिमा शहर में तापमान 34 डिग्री, कानाजावा शहर में 32 डिग्री और मध्यवर्ती टोक्यो और अकिता शहर में 31 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। देश के 47 प्रीफेक्चरों में से 7 के लिए तापघात चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो एयर कंडीशनर का उपयोग करें, तरल पदार्थ पीते रहें और बाहर निकलते समय छायादार स्थानों में रहने की कोशिश करें। एजेंसी का कहना है कि उष्णकटिबंधीय तूफान चानहोम जापान के पूर्वी तट से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार को तोहोकू और कांतोकोशिन क्षेत्रों के काफी करीब से गुजर सकता है। इससे तोहोकू के प्रशांत तट पर तेज हवाएं और समुद्र में भारी बारिश व ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कांतो क्षेत्र में बारिश व ऊंची लहरें और भीषण रूप ले सकती हैं। नीगाता प्रीफेक्चर में भी मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकारियों ने लोगों से तेज हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों को ताज़ा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी है। जापान के मध्यवर्ती प्रीफेक्चर नागानो में मृदास्खलन के कारण घाटी पर बना एक पुल बह जाने से लगभग 400 लोग अस्थायी रूप से फंस गए थे। फंसे हुए लोगों ने एक अस्थायी पुल के माध्यम से घाटी को पैदल पार किया, जिसके बाद स्थानीय अधिकारी उन्हें पास के रेलवे स्टेशन तक ले जाने के काम में जुटे हैं। शनिवार को भारी बारिश के कारण आजुमिनो शहर में

हिमस्खलन हुआ जिसके कारण एक पुल नष्ट हो गया और उत्तरी जापान एल्प्स में स्थित त्सुबाकुरो दाके पर्वत की एक पगडंडी की ओर जाने वाली सड़क अवरुद्ध हो गई। शिखर के पास एक झोपड़ी और पर्वतारोहण प्रवेश द्वार के पास स्पा होटलों सहित तीन सरायों में लगभग 390 लोग अस्थायी रूप से फंस गए थे। अस्थायी पुल का निर्माण रविवार दोपहर को पूरा किया गया। शहर के अधिकारियों ने फंसे हुए लोगों को वाहन से JR होताका स्टेशन तक पहुंचाया। लोगों को ले जाने का काम सोमवार को भी जारी रहा। प्रीफेक्चर अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 78 लोगों ने इस अस्थायी पुल का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य लोगों ने ऐसा करने के बजाय जापान एल्प्स से होकर ट्रैकिंग करके जाने का फैसला किया। खबरों के अनुसार सोमवार सुबह 8:30 बजे तक 86 लोग सरायों या पार्किंग स्थलों में ठहरे हुए थे। इनमें से 76 होटल कर्मचारी हैं।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के साथ वार्ता तब तक बहाल नहीं करेगा जब तक अमेरिका समझौता ज्ञापन के उल्लंघन के लिए उसे मुआवजा नहीं देता। ईरान के एक मीडिया केंद्र ने रविवार को होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के संबंध में विदेश मंत्री अब्बास अरागजी की टिप्पणियों पर खबर दी। अरागजी का कहना है कि ईरान इस समय अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा है। उनके अनुसार ईरान का मानना है कि समझौता ज्ञापन के कथित उल्लंघनों का समाधान होने और उन उल्लंघनों के लिए अमेरिका द्वारा ईरान को मुआवजा न दिए जाने तक वार्ता बहाल करना संभव नहीं होगा। अरागजी ने यह भी बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने से जुड़ी ईरान ओमान वार्ता अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जलडमरू मध्य को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलमार्ग का फिर से खुलना कई अन्य शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करता है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का कहना है कि काला सागर और उसके आसपास हुए कई हमलों के मद्देनजर तुर्की रूस और यूक्रेन से समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान कर रहा है। फिदान ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि पूरा काला सागर एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां युद्ध फैल चुका है। गौरतलब है कि तुर्की भी काला सागर से सटा है। फिदान ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन बिना किसी भेदभाव के सभी व्यावसायिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने खुलासा किया कि तुर्की ने रूस और यूक्रेन से काला सागर में हमले रोकने की घोषणा से संबंधित एक तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया था। फिदान ने दोनों पक्षों से रसद सुविधाओं पर बढ़ते हमलों को लेकर आत्मसंयम बरतने का भी आग्रह किया। गौरतलब है कि रूसी सेना ने पिछले महीने काला सागर बंदरगाह से मकई ले जा रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए थे। वहीं इस महीने की शुरुआत में रूस में काला सागर के एक व्यस्त तट पर एक उक्रेनी ड्रोन जा गिरा था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को उक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रूसी सेना ने काला सागर से सटे दक्षिणी क्षेत्र ओदेसा की रिहायशी इमारतों और एक बंदरगाह पर हमला किया जिसमें 8 लोग घायल हो गए। आपदाओं में मलबे में फंसे लोगों को बचाने के उद्देश्य से बनाए गए रोबोटों की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए शनिवार को कोबे शहर में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालयों और तकनीकी कॉलेजों के छात्रों की 12 टीमों के रोबोटों की कार्यक्षमता और परिचालन प्रौद्योगिकी को परखा गया। प्रतियोगियों ने आपदा स्थल जैसे दिखने वाले 5 मीटर चौड़े और 6 मीटर लंबे क्षेत्र में से बाधाएं हटाने और इंसानी शक्ल के पुतलों को धीरे से निकालने के लिए अपने अपने रोबोटों को बड़े एहतियात से चलाया। आयोजन समिति के अध्यक्ष नीमी हिरोफुमी ने कहा कि वास्तविक आपदा स्थल और प्रतियोगिता में उपयोग किए गए मॉडलों के बीच अब भी अंतर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये प्रतियोगिता प्रौद्योगिकी के विकास और कर्मियों के प्रशिक्षण में सहायक होगी। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा,
5: इतादाकिमासु,
0: भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारुजी ने कहा,
3: निहोंशोकु वा केंको नी इन देसु यो,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का,
1: ये कच्चा अंडा है?
0: हारुजी ने जवाब दिया,
3: हाय,
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: वताशी नमा तमागो वा तबेरारेमासेन,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो,
0: अच्छा,
4: जा नात्तो मो दामे,
0: तो फिर नात्तो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नात्तो दाइस्की देस,
1: नात्तो बहुत पसंद है।
0: नात्तो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नात्तो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमातामागो वा तबेरारेमासेन,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
6: नमातामागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
6: तबेरारेमासेन
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
6: तबेरारेमासेन,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
6: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
6: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
6: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
6: तबेरारेमासेन।
0: अभी आप इसे

0: एक शब्द की तरह याद कर लीजिए।
1: थबेरारेमासेन।
2: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे थबेरारेमासेन। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
1: थबेरारेमासेन।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
1: थबेरारेमासेन। नमा तमागो वा थबेरारेमासेन।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
3: दोज़ो, ताकसान ताबेते कुदासाए।
4: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
3: दोज़ो, ताकसान ताबेते कुदासाए।
2: लीजिए, भर पेट खाइएगा।
1: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
1: ताकसान
0: का मतलब है बहुत सारा और
1: ताबेते कुदासाई
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
1: ताबेरु
0: के ते रूप के बाद
1: कुदासाई
0: जोड़कर बना है।
2: दूसरी महिला ने उत्तर दिया
4: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
2: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
1: सुमिमासेन
0: का मतलब है माफ कीजिए।
1: वाताशी
0: का अर्थ है मैं और
1: साशिमी
0: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
2: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: साशिमी वा ताबेरारेमासेन। वाताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वाताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
1: एबी।
0: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
3: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा ताबेरारेमासेन।
2: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
1: बुतानिक।
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: सुमिमासेन, वाताशी बुतानिक वा ताबेरारेमासेन।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
6: इतादाकिमास।
1: इतादाकिमास
2: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
1: गुत्सो समादेश्ता।
0: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
1: इतादाकिमास
0: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
1: गुत्सो समादेश्ता।
2: तो सुनिए और दोहराइए।
1: इतादाकिमास गुत्सो समादेश्ता।
0: और दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश, काइतो के साथ खाना पीना,

0: पश्चिमी शैली का।
1: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी, तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 10 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी जापान में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त करते हुए लोगों से तापघात से बचाव के उपाय करने का आग्रह किया है। उसने ये भी कहा कि उष्णकटिबंधीय तूफान चान होम मंगलवार को देश के पूर्वी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि सोमवार को कोफू, गिफू, ओत्सु, सागा और कुमामोतो शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा नागोया और ओसाका शहरों में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। वहीं हिरोशिमा शहर में तापमान 34 डिग्री, कानाजावा शहर में 32 डिग्री और मध्यवर्ती टोक्यो और अकिता शहर में 31 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। देश के 47 प्रीफेक्चरों में से 7 के लिए तापघात चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो एयर कंडीशनर का उपयोग करें, तरल पदार्थ पीते रहें और बाहर निकलते समय छायादार स्थानों में रहने की कोशिश करें। एजेंसी का कहना है कि उष्णकटिबंधीय तूफान चानहोम जापान के पूर्वी तट से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार को तोहोकु और कांतोकोशिन क्षेत्रों के काफी करीब से गुजर सकता है। इससे तोहोकु के प्रशांत तट पर तेज हवाएं और समुद्र में भारी बारिश व ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कांतो क्षेत्र में बारिश व ऊंची लहरें और भीषण रूप ले सकती हैं। नीगाता प्रीफेक्चर में भी मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकारियों ने लोगों से तेज हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों को ताज़ा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी है। जापान के मध्यवर्ती प्रीफेक्चर नागानो में मृदास्खलन के कारण घाटी पर बना एक पुल बह जाने से लगभग 400 लोग अस्थायी रूप से फंस गए थे। फंसे हुए लोगों ने एक अस्थायी पुल के माध्यम से घाटी को पैदल पार किया, जिसके बाद स्थानीय अधिकारी उन्हें पास के रेलवे स्टेशन तक ले जाने के काम में जुटे हैं। शनिवार को भारी बारिश के कारण आजुमिनो शहर में मृदास्खलन हुआ, जिसके कारण एक पुल नष्ट हो गया और उत्तरी जापान एल्प्स में स्थित त्सुबाकुरो दाके पर्वत की एक पगडंडी की ओर जाने वाली सड़क अवरुद्ध हो गई। शिखर के पास एक झोपड़ी और पर्वतारोहण प्रवेश द्वार के पास स्पा होटलों सहित 3 सरायों में लगभग 390 लोग अस्थायी रूप से फंस गए थे। अस्थायी पुल का निर्माण रविवार दोपहर को पूरा किया गया। शहर के अधिकारियों ने फंसे हुए लोगों को वाहन से JR होताका स्टेशन तक पहुंचाया। लोगों को ले जाने का काम सोमवार को भी जारी रहा। प्रीफेक्चर अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 78 लोगों ने इस अस्थायी पुल का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य लोगों ने ऐसा करने के बजाय

जापान एल्प्स से होकर ट्रैकिंग करके जाने का फैसला किया। खबरों के अनुसार सोमवार सुबह 8:30 बजे तक 86 लोग सरायों या पार्किंग स्थलों में ठहरे हुए थे। इनमें से 76 होटल कर्मचारी हैं।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के साथ वार्ता तब तक बहाल नहीं करेगा जब तक अमेरिका समझौता ज्ञापन के उल्लंघन के लिए उसे मुआवजा नहीं देता। ईरान के एक मीडिया केंद्र ने रविवार को होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के संबंध में विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची की टिप्पणियों पर खबर दी। अराग़ची का कहना है कि ईरान इस समय अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा है। उनके अनुसार ईरान का मानना है कि समझौता ज्ञापन के कथित उल्लंघनों का समाधान होने और उन उल्लंघनों के लिए अमेरिका द्वारा ईरान को मुआवजा न दिए जाने तक वार्ता बहाल करना संभव नहीं होगा। अराग़ची ने यह भी बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने से जुड़ी ईरान ओमान वार्ता अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जलडमरू मध्य को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलमार्ग का फिर से खुलना कई अन्य शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करता है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का कहना है कि काला सागर और उसके आसपास हुए कई हमलों के मद्देनज़र तुर्की रूस और यूक्रेन से समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान कर रहा है। फिदान ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि पूरा काला सागर एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां युद्ध फैल चुका है। गौरतलब है कि तुर्की भी काला सागर से सटा है। फिदान ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन बिना किसी भेदभाव के सभी व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने खुलासा किया कि तुर्की ने रूस और यूक्रेन से काला सागर में हमले रोकने की घोषणा से संबंधित एक तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया था। फिदान ने दोनों पक्षों से रसद सुविधाओं पर बढ़ते हमलों को लेकर आत्मसंयम बरतने का भी आग्रह किया। गौरतलब है कि रूसी सेना ने पिछले महीने काला सागर बंदरगाह से मकई ले जा रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए थे। वहीं इस महीने की शुरुआत में रूस में काला सागर के एक व्यस्त तट पर एक यूक्रेनी ड्रोन जा गिरा था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रूसी सेना ने काला सागर से सटे दक्षिणी क्षेत्र ओदेसा की रिहायशी इमारतों और एक बंदरगाह पर हमला किया जिसमें 8 लोग घायल हो गए। आपदाओं में मलबे में फंसे लोगों को बचाने के उद्देश्य से बनाए गए रोबोटों की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए शनिवार को कोबे शहर में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालयों और तकनीकी कॉलेजों के छात्रों की 12 टीमों के रोबोटों की कार्यक्षमता और परिचालन प्रौद्योगिकी को परखा गया। प्रतियोगियों ने आपदा स्थल जैसे दिखने वाले 5 मीटर चौड़े और 6 मीटर लंबे क्षेत्र में से बाधाएं हटाने और इंसानी शक्ल के पुतलों को धीरे से निकालने के लिए अपने अपने रोबोटों को बड़े एहतियात से चलाया। आयोजन समिति के अध्यक्ष नीमी हिरोफुमी ने कहा कि वास्तविक आपदा स्थल और प्रतियोगिता में उपयोग किए गए मॉडलों के बीच अब भी अंतर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये प्रतियोगिता प्रौद्योगिकी के विकास और कर्मियों के प्रशिक्षण में सहायक होगी। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा
5: इतादाकिमास,
0: भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारुजी ने कहा
6: निहोंशोकु वा केंको नी इन देसु यो,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा
2: कोरे नमा तमागो देसु का,
1: ये कच्चा अंडा है?
0: हारुजी ने जवाब दिया
6: हाय,
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा
2: स्मिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: वताशी नमा तमागो वा तबेरारेमासेन,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा
4: सो,
0: अच्छा,
4: जा नातो मो दामे,
0: तो फिर नातो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया
2: नातो दाइस्की देस,
1: नातो बहुत पसंद है।
0: नातो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नातो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: नमातामागो वा तबेरारेमासेन,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
7: नमा तमागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
7: तबेरारेमासेन
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
7: तबेरारेमासेन,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
7: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
7: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
7: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
7: तबेरारेमासेन।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए
7: तबेरारेमासेन।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासेन। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
7: तबेरारेमासेन।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए
7: तबेरारेमासेन। नमा तमागो वा तबेरारेमासेन।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।

0: どうぞたくさん食べてください。
1: すみません、私刺身は食べられません。
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
0: दोज़ो ताकसान ताबेते कुदासाई,
3: लीजिए भर पेट खाइएगा।
4: दोज़ो
2: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
4: ताकसान
2: का मतलब है बहुत सारा और
4: ताबेते कुदासाई
2: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
4: ताबेरु
2: के ते रूप के बाद
4: कुदासाई
2: जोड़कर बना है।
3: दूसरी महिला ने उत्तर दिया,
1: सुमिमासेन, वतशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
3: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
4: सुमिमासेन
2: का मतलब है माफ कीजिए,
4: वतशी
2: का अर्थ है मैं और
4: साशिमी
2: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
3: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: साशिमी वा ताबेरारेमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
4: एबी।
2: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
0: सुमिमासेन, वताशी एबी वा ताबेरारेमासेन।
3: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
4: बुतानिक।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: すみません。私、豚肉は食べられません。
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
4: いただきます।
3: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
4: गुत्सो समादेश्ता।
2: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
4: इतादाकिमास
2: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
4: गुत्सो समादेश्ता।
3: तो सुनिए और दोहराइए।
4: इतादाकिमास, गुत्सो समादेश्ता।
2: और दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
2: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
3: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
2: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
3: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए।

0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। ईरान का कहना है कि वो उस वक्त तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वाशिंगटन उसके लिए मुआवजा अदा नहीं करता, जिसे ईरान मफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देता है। इतवार के रोज एक ईरानी मीडिया आउटलेट ने आबनाए हुरमस को दोबारा खोलने के बारे में वजीर खारजा अब्बास इराकची के रिमार्क्स के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। इराकची ने कहा कि ईरान फिलहाल अमरीका के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। उन्होंने इशारा दिया कि ईरान का ख्याल है कि जब तक मुफाहमत की याददाश्त की मुबैना खिलाफ वर्जियों का हल नहीं निकाला जाता और जब तक वाशिंगटन इन खिलाफ वर्जियों के लिए तेहरान को मुआवजा नहीं देता, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना मुमकिन नहीं होगा। इराकची ने यह भी बताया कि ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुरमस में एक नए समुद्री रास्ते के तयन के लिए मुज़ाकरात आखिरी मराहल में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आबनाए को दोबारा खोल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस आबी गुजरगाह को दोबारा खोलना दीगर शराइत की तकमील से मशरूत है। तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि अंकरा रूस और यूक्रेन पर जोर दे रहा है कि वो बहिरा अस्वद के अंदर और उसके इर्द गिर्द हमलों के तनाजुर में समंदरी हिफाजत को यकीनी बनाए। हाकान फिदान ने हफ्ते के रोज सहाफियों को बताया कि पूरा बहिरा अस्वद उन इलाकों में शामिल हो गया है जहां जंग फैल चुकी है। तुर्की समंदर से मुतसिल ममालिक में से एक है। फिदान ने मजीद कहा कि रूस और यूक्रेन तमाम तजारती जहाजों पर बिला तफरीक हमला कर रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा ने इंकशाफ किया कि अंकरा ने बहिरा अस्वद के हमले रोकने के लिए मैकेनिज्म के कयाम के बारे में मास्को और कीफ को आगाह किया है। फिदान ने दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो लॉजिस्टिक सहूलियात पर अपने बढ़ते हुए हमलों पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये एकदम उस वक्त सामने आया जब रूसी अफवाज ने गुज़श्ता माह बहिरा अस्वद की बंदरगाह से मकई ले जाने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमला किया था जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए थे। इसी माह यूक्रेन का एक ड्रोन रूस में बहिरा अस्वद के एक पुरहजूम साहिल पर गिरा था जिससे 7 अफराद हलाक हो गए थे। इतवार के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रूसी अफवाज ने बहिरा अस्वद के जनूबी इलाके ओडिशा में रिहायशी इमारतों और एक बंदरगाह पर हमला किया जिसमें 8 अफराद जख्मी हुए। आफात में मलबे तले दबे लोगों को बचाने के लिए बनाए गए रोबोट्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हफ्ते के रोज कोबे शहर में एक मुकाबला मुनक्किद हुआ। यूनिवर्सिटियों और टेक्निकल कॉलेजेस के तलबा समेत 12 टीमों के रोबोट्स के फंक्शंस और उनकी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को जांचा गया। मुकाबला करने वालों ने रुकावटों को दूर करने के लिए अपने रोबोट्स को एहतियात से कंट्रोल किया और किसी साने के मकाम से मुशावत रखने वाले 5x6 मीटर के इलाके से इंसानी शक्ल की एक गुड़िया को आहिस्तगी से निकाला। मुंतजिम कमेटी के सरबरा निमी हिरोफूमी ने कहा कि सानियात के असल मकामात और मुकाबले में इस्तेमाल होने वाले मकामात के दरमियान अब भी फर्क है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुकाबला टेक्नोलॉजी की तरक्की और अमला तैयार करने में मदद करेगा।
1: और सामिन, अब आज की अहम खबरों की चंद सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान की मौसमियाती एजेंसी के हुक्काम पीर के रोज मशरकी और मगरबी जापान के लिए एक और झुलसा देने वाले दिन की पेशगोई करते हुए लोगों से हीट स्ट्रोक से बचाव के इकदाम करने का कह रहे हैं। और नागानो प्रीफेक्चर में कीचड़ के सबब पुल टूटने से फंसे तकरीबन 400 अफराद को उस इलाके से निकाला जा रहा है। और ईरान का कहना है कि वो उस वक्त तक अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वाशिंगटन उसके लिए मुआवजा अदा नहीं करता, जिसे ईरान मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देता है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 10 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी जापान में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त करते हुए लोगों से तापघात से बचाव के उपाय करने का आग्रह किया है। उसने ये भी कहा कि उष्णकटिबंधीय तूफान चानहोम मंगलवार को देश के पूर्वी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि सोमवार को कोफू, गिफू, ओत्सु, सागा और कुमामोतो शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा नागोया और ओसाका शहरों में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। वहीं हिरोशिमा शहर में तापमान 34 डिग्री, कानाजावा शहर में 32 डिग्री और मध्यवर्ती टोक्यो और अकिता शहर में 31 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। देश के 47 प्रीफेक्चरों में से 7 के लिए तापघात चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो एयर कंडीशनर का उपयोग करें, तरल पदार्थ पीते रहें और बाहर निकलते समय छायादार स्थानों में रहने की कोशिश करें। एजेंसी का कहना है कि उष्णकटिबंधीय तूफान चानहोम जापान के पूर्वी तट से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार को तोहोकू और कांतोकोशिन क्षेत्रों के काफी करीब से गुजर सकता है। इससे तोहोकू के प्रशांत तट पर तेज हवाएं और समुद्र में भारी बारिश व ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कांतो क्षेत्र में बारिश व ऊंची लहरें और भीषण रूप ले सकती हैं। नीगाता प्रेफेक्चर में भी मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकारियों ने लोगों से तेज हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों को ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी है। जापान के मध्यवर्ती प्रीफेक्चर नागानो में मृदास्खलन के कारण घाटी पर बना एक पुल बह जाने से लगभग 400 लोग अस्थायी रूप से फंस गए थे। फंसे हुए लोगों ने एक अस्थायी पुल के माध्यम से घाटी को पैदल पार किया, जिसके बाद स्थानीय अधिकारी उन्हें पास के रेलवे स्टेशन तक ले जाने के काम में जुटे हैं। शनिवार को भारी बारिश के कारण आजुमिनो शहर में मृदास्खलन हुआ, जिसके कारण एक पुल नष्ट हो गया और उत्तरी जापान एल्प्स में स्थित त्सुबाकुरो दाके पर्वत की एक पगडंडी की ओर जाने वाली सड़क अवरुद्ध हो गई। शिखर के पास एक झोपड़ी और पर्वतारोहण प्रवेश द्वार के पास स्पा होटलों सहित 3 सरायों में लगभग 390 लोग अस्थायी रूप से फंस गए थे। अस्थायी पुल का निर्माण रविवार दोपहर को पूरा किया गया। शहर के अधिकारियों ने फंसे हुए लोगों को वाहन से JR होताका स्टेशन तक पहुंचाया। लोगों को ले जाने का काम सोमवार को भी जारी रहा। प्रीफेक्चर अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 78 लोगों ने इस अस्थायी पुल का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य लोगों ने ऐसा करने के बजाय जापान एल्प्स से होकर ट्रैकिंग करके जाने का फैसला किया। खबरों के अनुसार सोमवार सुबह 8:30 बजे तक 86 लोग सरायों या पार्किंग स्थलों में ठहरे हुए थे। इनमें से 76 होटल कर्मचारी हैं।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के साथ वार्ता तब तक बहाल नहीं करेगा जब तक अमेरिका समझौता ज्ञापन के उल्लंघन के लिए उसे मुआवजा नहीं देता। ईरान के एक मीडिया केंद्र ने रविवार को होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के संबंध में विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची की टिप्पणियों पर खबर दी। अराग़ची का कहना है कि ईरान इस समय अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा है। उनके अनुसार ईरान का मानना है कि समझौता ज्ञापन के कथित उल्लंघनों का समाधान होने और उन उल्लंघनों के लिए अमेरिका द्वारा ईरान को मुआवजा न दिए जाने तक वार्ता बहाल करना संभव नहीं होगा। अराग़ची ने यह भी बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने से जुड़ी ईरान ओमान वार्ता अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जलडमरू मध्य को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलमार्ग का फिर से खुलना कई अन्य शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करता है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का कहना है कि काला सागर और उसके आसपास हुए कई हमलों के मद्देनज़र तुर्की रूस और यूक्रेन से समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान कर रहा है। फिदान ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि पूरा काला सागर एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां युद्ध फैल चुका है। गौरतलब है कि तुर्की भी काला सागर से सटा है। फिदान ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन बिना किसी भेदभाव के सभी व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने खुलासा किया कि तुर्की ने रूस और यूक्रेन से काला सागर में हमले रोकने की घोषणा से संबंधित एक तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया था। फिदान ने दोनों पक्षों से रसद सुविधाओं पर बढ़ते हमलों को लेकर आत्मसंयम बरतने का भी आग्रह किया। गौरतलब है कि रूसी सेना ने पिछले महीने काला सागर बंदरगाह से मकई ले जा रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए थे। वहीं इस महीने की शुरुआत में रूस में काला सागर के एक व्यस्त तट पर एक उक्रेनी ड्रोन जा गिरा था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को उक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रूसी सेना ने काला सागर से सटे दक्षिणी क्षेत्र ओदेसा की रिहायशी इमारतों और एक बंदरगाह पर हमला किया जिसमें 8 लोग घायल हो गए। आपदाओं में मलबे में फंसे लोगों को बचाने के उद्देश्य से बनाए गए रोबोटों की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए शनिवार को कोबे शहर में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालयों और तकनीकी कॉलेजों के छात्रों की 12 टीमों के रोबोटों की कार्यक्षमता और परिचालन प्रौद्योगिकी को परखा गया। प्रतियोगियों ने आपदा स्थल जैसे दिखने वाले 5 मीटर चौड़े और 6 मीटर लंबे क्षेत्र में से बाधाएं हटाने और इंसानी शक्ल के पुतलों को धीरे से निकालने के लिए अपने अपने रोबोटों को बड़े एहतियात से चलाया। आयोजन समिति के अध्यक्ष नीमी हिरोफुमी ने कहा कि वास्तविक आपदा स्थल और प्रतियोगिता में उपयोग किए गए मॉडलों के बीच अब भी अंतर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये प्रतियोगिता प्रौद्योगिकी के विकास और कर्मियों के प्रशिक्षण में सहायक होगी। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा,
5: इतादाकिमासु,
0: भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारुजी ने कहा,
3: निहोंशोकु वा केंको नी इन देसु यो,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का?
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारुजी ने जवाब दिया,
3: हाय,
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: वताशी नमा तमागो वा तबेरारेमासेन,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो,
0: अच्छा,
4: जा नात्तो मो दामे,
0: तो फिर नात्तो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नात्तो दाइस्की देस,
1: नात्तो बहुत पसंद है।
0: नात्तो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नात्तो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमातामागो वा तबेरारेमासेन,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
6: नमातामागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
6: तबेरारेमासेन
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
6: तबेरारेमासेन,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
6: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
6: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
6: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
6: तबेरारेमासेन।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए,
6: तबेरारेमासेन।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासेन। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
6: तबेरारेमासेन।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए,
6: तबेरारेमासेन।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
7: दोज़ो, ताकुसान ताबेते कुदासाई।
2: सुमिमासेन, वताशी सशिमी वा तबेरारेमासेन।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
7: दोज़ो, ताकुसान ताबेते कुदासाई,
1: लीजिए, भर पेट खाइएगा।
6: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
6: ताकुसान
0: का मतलब है बहुत सारा और
6: 食べてください。
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
6: 食べる
0: के ते रूप के बाद
6: ください
0: जोड़कर बना है।
8: दूसरी महिला ने उत्तर दिया
2: すみません。私、刺身は食べられません。
8: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
6: すみません。
0: का मतलब है माफ कीजिए।
6: 私。
0: का अर्थ है मैं और
6: साशिमी
0: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
8: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
6: साशिमी は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
6: एबी।
0: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
2: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा तबेरारेमासेन।
8: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
6: बुतानिकु।
8: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
9: すみません。私、豚肉は食べられません。
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: いただきます।
6: いただきます।
8: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
6: ごちそうさまでした।
0: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
6: いただきます
0: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
6: ごちそうさまでした।
8: तो सुनिए और दोहराइए।
6: いただきます。ごちそうさまでした।
0: और दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
8: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
0: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
8: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
0: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
8: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
0: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
8: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। ईरान का कहना है कि वो उस वक्त तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वाशिंगटन उसके लिए मुआवजा अदा नहीं करता, जिसे ईरान मफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देता है। इतवार के रोज एक ईरानी मीडिया आउटलेट ने आबनाए हुरमस को दोबारा खोलने के बारे में वजीर खारजा अब्बास इराकची के रिमार्क्स के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। इराकची ने कहा कि ईरान फिलहाल अमरीका के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। उन्होंने इशारा दिया कि ईरान का ख्याल है कि जब तक मुफाहमत की याददाश्त की मुबैना खिलाफ वर्जियों का हल नहीं निकाला जाता और जब तक वाशिंगटन इन खिलाफ वर्जियों के लिए तेहरान को मुआवजा नहीं देता, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना मुमकिन नहीं होगा। इराकची ने यह भी बताया कि ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुरमस में एक नए समुद्री रास्ते के तयन के लिए मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आबनाए को दोबारा खोल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस आबी गुजरगाह को दोबारा खोलना दीगर शराइत की तकमील से मशरूत है। तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि अंकरा रूस और यूक्रेन पर जोर दे रहा है कि वो बहिरा अस्वद के अंदर और उसके इर्द गिर्द हमलों के तनाजुर में समंदरी हिफाजत को यकीनी बनाए। हाकान फिदान ने हफ्ते के रोज सहाफियों को बताया कि पूरा बहिरा अस्वद उन इलाकों में शामिल हो गया है जहां जंग फैल चुकी है। तुर्की समंदर से मुतसिल ममालिक में से एक है। फिदान ने मजीद कहा कि रूस और यूक्रेन तमाम तजारती जहाजों पर बिला तफरीक हमला कर रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा ने इंकशाफ किया कि अंकरा ने बहिरा अस्वद के हमले रोकने के लिए मैकेनिज्म के कयाम के बारे में मास्को और कीफ को आगाह किया है। फिदान ने दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो लॉजिस्टिक सहूलियात पर अपने बढ़ते हुए हमलों पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये एकदम उस वक्त सामने आया जब रूसी अफवाज ने गुज़श्ता माह बहिरा अस्वद की बंदरगाह से मकई ले जाने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमला किया था जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए थे। इसी माह यूक्रेन का एक ड्रोन रूस में बहिरा अस्वद के एक पुरहजूम साहिल पर गिरा था जिससे

0: सात अफराद हलाक हो गए थे। इतवार के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रूसी अफवाज ने बहिरा अस्वद के जनूबी इलाके ओडिशा में रिहायशी इमारतों और एक बंदरगाह पर हमला किया जिसमें आठ अफराद जख्मी हुए। आफात में मलबे तले दबे लोगों को बचाने के लिए बनाए गए रोबोट्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हफ्ते के रोज कोबे शहर में एक मुकाबला मुनक्किद हुआ। यूनिवर्सिटियों और टेक्निकल कॉलेजेस के तलबा समेत 12 टीमों के रोबोट्स के फंक्शंस और उनकी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को जांचा गया। मुकाबला करने वालों ने रुकावटों को दूर करने के लिए अपने रोबोट्स को एहतियात से कंट्रोल किया और किसी सानहे के मकाम से मुशावत रखने वाले 5x6 मीटर के इलाके से इंसानी शक्ल की एक गुड़िया को आहिस्तगी से निकाला। मुंतजिम कमेटी के सरबरा निमी हिरोफूमी ने कहा कि सानियात के असल मकामात और मुकाबले में इस्तेमाल होने वाले मकामात के दरमियान अब भी फर्क है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुकाबला टेक्नोलॉजी की तरक्की और अमला तैयार करने में मदद करेगा।
1: और सामिन, अब आज की अहम खबरों की चंद सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान की मौसमियाती एजेंसी के हुक्काम पीर के रोज मशरकी और मगरबी जापान के लिए एक और झुलसा देने वाले दिन की पेशगोई करते हुए लोगों से हीट स्ट्रोक से बचाव के इकदाम करने का कह रहे हैं। और नागानो प्रीफेक्चर में कीचड़ के सबब पुल टूटने से फंसे तकरीबन 400 अफराद को उस इलाके से निकाला जा रहा है। और ईरान का कहना है कि वो उस वक्त तक अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वॉशिंगटन उसके लिए मुआवजा अदा नहीं करता जिसे ईरान मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देता है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

0: そうさまでした。
1: जापानियों के साथ खाना खाते वक्त अगर आप ये इस्तेलाह हाथ इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके साथ उनसियत महसूस करेंगे।
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं, उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम ने कोई चीज ना खा सकने की बात की है।
3: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私
4: 生卵は食べられません。
5: そう、じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブ खानों के शौकीन काइतो के मशहूरों का कॉर्नर। आज का मौजू जापानी नाश्ता है।
2: हीरा, जापानी नाश्ते से आपके जहन में कैसा नाश्ता आता है?
1: उबले हुए चावल, मिसो सूप और भुनी हुई मछली वगैरह, यानी बिल्कुल इस सबक के मकामे वाला मंजर।
2: आपने रिवायती जापानी नाश्ते की बिल्कुल दुरुस्त मंजर कशी की है। बाज़ लोग खमीर लगे हुए सोयाबीन से तैयार करदा नत्तो, खुश्क खुर्दनी समुद्री नबातात, आलूचे का अचार या अंडे भी खाते हैं। आज के मकालमे में कच्चे अंडे का जिक्र था, लेकिन जापानी अंदाज का आमलेट भी आम है।
1: वैसे आजकल जापानी लोग मगरबी अंदाज का नाश्ता भी तो करते होंगे।
2: जी बिल्कुल, आजकल डबल रोटी, तले हुए अंडे, फलों के जूस और चाय या कॉफी वाला नाश्ता भी काफी आम है।
1: तो यहाँ के होटलों में किस किस्म का नाश्ता मिलता है?
2: जापानी अंदाज की सराय में तो आमतौर पर रिवायती जापानी नाश्ता होता है, लेकिन होटलों में ग्राहक आमतौर पर जापानी या मगरबी अंदाज के नाश्ते में से इंतखाब कर सकते हैं। कई होटलों में बुफे सर्विस भी होती है जिसमें मुकर्रर पैसों में जो मर्जी और जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं।
1: फिर तो मेरे लिए बुफे सर्विस बेहतर है, इसमें जापानी और मगरबी दोनों अंदाज की चीजें खाई जा सकती हैं। अगले सबक में ताम की तबीयत कुछ खराब है। हारुसान उसे कुछ मशवरा देती हैं।